0: 말
1: 뭐지 뭐지 뭐지 언제 다 어떻게 하니? 자자자자자
0: प्यार से दे रहे हैं रख लो
1: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दूचारी भी क्या लिखवा ले का अरे रे ए ए
0: आ जिगर पलट